मेरा उलझना है रिके रे रे। Arasha jolo kemuruko pana le tebo mulo ye rere modimo reboka wena.